0: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi.
1: बेबी छोटी
2: मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।